वेशभूषा संस्कृति हो संरक्षण ओ प्रवर्धन करी थारुङकी प्राचीन मौलिक कला संस्कृति हो जोगाई आदरणीय दादु भैया दिदी बहिनी हुक्र यही कुवार महिना के 25 गते अटवार के दिन चौरौ जुरा जगेना सांस्कृतिक कार्यक्रम ठाकुर बाबा प्रज्ञा प्रतिष्ठान के सहयोग में ओ ठाकुर बाबा बरघर सञ्जाल के आयोजना में ठाकुर बाबा नगर पालिका टीम जुटपानी बगनहा हाट बजार में हिना हिला घोषे कार्यक्रम में सहभागिता के लाग मई गर अर्जी करती कार्यक्रम हुइना दिन यही कुवार 25 गते अटुवा बिहान 11 बजे से आयोजक ठाकुर बाबा बरघर सञ्जाल समिति ठाकुर बाबा नगरपालिका बर्दिया

कार्यक्रम हुइनाडिन यही क्वार 25 गते अटुवा बिहानी 11 बजे से आयोजक ठाकुर बाबा बर्खर सञ्जाल समिति ठाकुर बाबा नगरपालिका बर्दिया।

कार्यक्रम हुइना दिन यह कुवात 25 गते अटुवा बिहानी 11 बजे से आयोजक ठाकुर बाबा बर्खर सञ्जाल समिति ठाकुर बाबा नगरपालिका बर्दिया।

यो हो रेडियो टाइगर 90.2 मेगाहर्ज। रेडियो टाइगर स्टूडियो टाइम। यति बेला बिहानको 11 बजेको छ।

यो हो रेडियो टाइगर 90.2 मेगाहर्ज। रेडियो टाइगर स्टूडियो टाइम। यति बेला साँझको 6 बजेको छ।